0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के

0: रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00868518842845। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का

0: सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की

0: In the second innings of the second and final test at Colombo, after India enforced a follow-on, Sri Lanka were 364 for 8 a short while ago. Sonal Dinusha and Kesharag Muvanta put together a crucial over 112-run partnership for the seventh wicket, frustrating the Indian bowlers during the morning session before Manav Sadar broke the partnership straight after the lunch break. Earlier, Sri Lanka were bowled out for 290 in their first innings after India had declared their first innings at 503 for 9. India, who had already won the opening test in Galle, secured a first innings lead of 213 runs and asked Sri Lanka to bat again. India currently lead the two-match series 1-0. In squash, India's Veer Chotrani and Velavan Senthilkumar have stormed into the semi-finals of the Budapest Open. Chotrani defeated Egypt's Mohamed El Sherbini 3-1 in the quarterfinal, while Velavan Senthilkumar beat Malaysia's Ian Yao Wu 3-0 yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. Benchmark domestic equity indices were trading with modest losses in the afternoon session today. The Sensex was down 143 points to 77,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. U.S. President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extends their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है ये विकसित भारत

0: के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से T-सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इम्पोर्ट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती

भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಹೇಳಿ. कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार,
0: हेल्दी नमस्कार.
1: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी, सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार.
0: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार.
1: बिल्कुल,
0: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना.
1: बिल्कुल,
0: यही चाहत होती है. एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा.
1: बिल्कुल, और साथ ही हम जो विषय लेके आए उसके बारे में बता देते हैं. आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
0: यानी कि वर्ल्ड लेक डे.
1: हाँ जी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें.

0: और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
1: हाँ,
0: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
1: बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहां हैं जहां उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहां रह रहे हैं वहां पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहां रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग बस आते जाते रहिए।
0: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहां पे हमेशा से रह रहे हैं, वहां पे उनका पूरा सब दोस्त है, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण है, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
1: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
1: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी समस्या आजकल।
1: ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन्स वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
1: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
0: जी

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए। हाँ, कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते हैं,
1: कड़वाहट नहीं कहते,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर,
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना, बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे हैं, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था
0: जी। और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुखद नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई, तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी
1: जी।
0: उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
1: बिल्कुल, और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना, तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया, और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफर था आरती, ये आसान नहीं था।

0: क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ तो मुझे जरूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की, तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल। और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे बढ़कर आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
1: बिल्कुल। उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला, उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
0: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। उनकी लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल। और उन्होंने लाकर दिखाया, वो
0: लाकर दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम क्या कर सकते हैं,
1: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है, कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ, और क्या, ऐसे तो
0: पता है आरती एक हल्की सी शर्मिली से मुस्कान दे रही है सारे।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी, और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनके जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी है जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही है। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कभी उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती है कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था, तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा।

0: जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
1: बिल्कुल सही कहा और हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे, क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनके उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों डट कर उसका सामना
0: हार नहीं मानना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: एक गीत सुन ले।
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: मर जाएगी।
1: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
2: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे होता है, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
1: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
2: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन

0: जन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है
1: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती है। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें, अगर हम पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं, झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, अपने संदेश लिखा है, तो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने सुंदर नजारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नजारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
1: बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल की कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
0: बिल्कुल, और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
1: जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं। एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
1: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है, जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है, और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताई, जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम अब बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है, तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहां उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो हम वहां से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहां पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। गीत सुन ले।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही सुंदर गीत था ना,
1: बहुत प्यारा। और ये जब बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम? जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी करना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं।
1: जब आपको मन करे, कोई उम्र की सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर,
0: घर को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर।
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
1: आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपके आवाज पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
0: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है, और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
1: बिल्कुल। अभी हम शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श कर लीजिए।
0: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े,
1: जरूरत ही ना पड़े
0: चीज की।
1: जी।
0: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए, बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए, बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप

0: इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती। तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपनी अपनी सारी जरूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीजें होती हैं उनको सीखना और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीजें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
1: बिल्कुल। और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या किया
0: गया? संगीत।

तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई अच्छे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, या सरकारी योजनाएं हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप

0: और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही आजाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की।
1: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है घर में भी, हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो, उसी के हम उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो दूर से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे, दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं, कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे, और अलमारी जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें, सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, ये गंध सोखने में मदद करता है, और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये एक ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
0: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं, इसमें तो जो सीलन की मैक है वो आती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
1: भी जाते हैं, जाते हैं।
0: जो कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीजें करने से और क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती है कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दे ताकि नमी अंदर ना आ पाए, और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह है या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें, इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी दो दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है, या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी खट्टा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में।
0: एक और हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है, और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहां पर सीलन ज्यादा होती है, तो ये चीजें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीजें आप जो बताएं ना, ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है,
1: बहुत देर तक बनी रहती है और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से, और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें, और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें, और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए, और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएं,
0: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: थोड़े से भी गीले
1: काले कलर के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ जाए,
0: बिल्कुल,
1: और वो दिखाई देती है असल में।
0: बिल्कुल, तो जो भी गीले कपड़े गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है।

0: क्योंकि जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
1: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदे मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: और अब अच्छा मूड बने के लिए, अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए।

0: कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है।
1: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती।
2: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मुंगारु हंगामिना बेले वीमे नोंदणी माडिकोळ्ळिरी।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र हेच्चिन माहितिगागि www.samrakshane.karnataka.gov.in वेबसाइट के भेटी नीडी।

0: ಸುರಿಗಂಧ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज. लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय. मृतकों की संख्या 359 हुई. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी. इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की. और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ. भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती. भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. श्री

0: सवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 और 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-9 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-7-9-8-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: डिस्कशन आर एक्सपेक्टेड। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतर

0: प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
1: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोल जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि

0: 20वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में डिजिटल के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालय से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्ध

0: उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
1: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and host Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinched the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has